किश्तियों का क्या है, अक्सर यही हुआ है, से निकल कर सहन पे जाओ अफसाना, क्या बताए। It's a song that I liked from a long time ago from a woman named Reshma. She sang it. She was, found singing in a forest because she's a villager.